तो आंच का जोंग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: to enjoy ever.
1: और रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशा बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा. तो आओ चला जाए आओ है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाटक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है। क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली। झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मूवी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो मैथ मुकेश की आवाज में।

out the heart of the millions, Mukesh, movie ka naam hai Sriman Satyavati, jisme Raj Kapoor ne kaam kiya hai dosto. Aur uske baad to hum chalte hai shair aur shayari ki mood mein to hum hai dosto, lekin aapko hum kya kya sunayenge kya nahi sunayenge. कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर. हाँ, ये तो खूब है दोस्तों. एक तरह नाम रहे जुबान पर, जैसे चांद रहे आसमान पर. ये जिंदगी है दोस्तों. कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छे लगते हो. तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर. मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है. परमा श्री मोहम्मद रफीर का गीत है.

के तोड़ दो प्याले फेंक दो बोतल मेरे पीछे होलो राम बोलो राम बोलो राम बो बो बो बोलो हाय बोतल में बंद जवानी पीले बिल

0: दरवाजा खोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो
1: और राम बोलो बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरेगी तो आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीने दिल हो जवान परमा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी होए हम भी है तो कुछ प्यार के बातें करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का परमा श्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ। तो इसके बाद हम चलते हैं और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है। तो ये हम आपको सुनाते, किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वेल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती जटले जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जी लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

हम लोग जानते हैं कि पुराने गीतों की मजा कुछ और है, हमारे जनता और हम चलते हैं। मीना कुमारी का एक फिल्म है, मीना कुमारी का एक फिल्म मौफी का नाम है, मौसी का नाम है बैजू भौरा। नेहीटिन होंड 3 and 5 तक में एक सुपर हिट फिल्म ये थे। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं दोस्तों।

बता जी का ये जों थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये जों है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये जों है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना घुमरा। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

मुझको मन फन तुझको मेरा प्यार पुकारे मौफी के नाम है घुमरा। अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं और आप लोग जानते हो एक भी सुपर हिट सॉन्ग है ये, आओ सुना जाइए क्या कहते हैं हमारे दोस्तों।

ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फाउन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

समझी मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों तो अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों कौन थे ये चमेली कौन थे? दोस्तों चमेली, अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

तो एक गीत यहां से है और मूवी के नाम है प्यार किया तो, प्यार किया तो डरना क्या। परमा श्री मोहम्मद रफी का नीघ दृढ़ ष्टकाये जोए।

और जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मूवी का नाम है प्यार किया तू डरना क्या, लेकिन जो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं है, लेकिन झूठ भी मत बोलना, झूठ भी मत बोलना। झूठ बोलने पर सजा मिल सकते हैं। और मूवी का नाम है तीसरी कसम।

तो आपको तो कहीं जाकर फरखलारिंग देना पड़ेगा, और वो कहां पर जाकर देना पड़ेगा इस गीत ने आपको बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर, मध्य मुकेश कहां गया हुआ जो है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल, करोड़ों की चुराने वाला, The Heart of Millions, Mighty Mukesh.

धीरे रे चलो मेरी बाकी रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर। और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए हैं। मूवी का नाम है 20 साल बाद। निकट होंगे 26 का ये सॉन्ग है दादा हेमंत कुमार।

साल बाद नई खती होंड ट्वीन से सकदादा हेमंत कुमार का ये जोंग थे दोस्तों। इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार नेक तक का जोन और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है साजन।

भी प्यार करते हैं, तुझको जन्म ताराया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं थी मुकेश का ये सॉन्ग है।

और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको सुनाएंगे मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे और गीत है इस फिल्म में दोस्तों लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा, निकट हो द्रियन शस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निगेटिव द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

इसमें उसमें और फिल्म के नाम है अंदाज 1999 तक का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।

मैं आपका सेवक गोपाल परदेशी बाबा। मित्रों, मनुष्य दुखी और अशांत हुआ क्यों? कुछ ऐसा कर्म किए जो अच्छे न होने के कारण विकर्म हो गए। सज्जनों, उन विकर्मों से मनुष्य के संस्कार भी अशुद्ध हो गए, जिसके परिणाम में मनुष्य दुख पूर्वक जन्म मरण के चक्कर में अथवा क्लेशकारी कर्म बंधन के चक्कर में फंसकर दुख का भागी हुआ। सज्जनों, तो यदि अब हम दुख से छुटकारा तथा पूर्ण सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है, यानी जरूरी है कि एक तो हमारे पिछले विकर्म भस्म हो जाएं, ताकि उन रहे हुए विकर्मों का दुख अथवा दंड न भोगना पड़े, और दूसरे भविष्य के लिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए ताकि सुख प्राप्त हो सके। तो भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, पिछले कर्मों को भस्म करने के लिए तथा वर्तमान और भविष्य में शुद्ध कर्म करने योग्य बनने के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म अथवा शुभ कर्म का ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान आपको होना चाहिए। सज्जनों, ज्ञान के बिना न पिछले विकर्म विनष्ट हो सकते हैं और न आगे के लिए ही मनुष्य पवित्र जीवी बन सकता है। नहीं हो पाएगा मित्रों, इसलिए उक्ति यानी उपाय है कि ज्ञान से सदगति होती है। तो ज्ञान अग्नि में पिछले भी कर्म भी भस्म हो जाते हैं और ज्ञान अमृत से आत्मा पवित्र हो जाने के कारण विकर्मी विकारी नहीं होती। विकारी कर्म बंधनों के समाप्त हो जाने पर मनुष्य आत्मा कर्म अतीत अवस्था को प्राप्त करती है, यानी बुरे कर्मों से छुटकारा अवस्था को प्राप्त करती है, जो ही दुख सुख से न्यारी अवस्था है। मित्रों, उसके पश्चात आत्मा फिर जब शरीर धारण करती है तो शुभ संस्कार होने के कारण जन्म जन्मांतर तक सुख शांति का उपभोग करती है। मित्रों, इसलिए मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य अथवा विकारी से निर्विकारी बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो अमृतवाणी द्वारा आप तक पहुंच

अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य को कौन सा ज्ञान मिले जिससे उसके कर्म विकर्म बन जाने के कारण वो आज दुखी और अशांत है। भाई बहनों, विचार करने पर मालूम होगा

इच्छा पांच तत्वों की विनाशी देह समझ बैठी और देह के विनाशी को अपना यानी अविनाशी संबंधी मान बैठी, जिसके कारण उसके कर्म काम क्रोध लोभ आदि विकारों के साथ मिल गई। सज्जनों, इसी से उसके कर्म भी विकर्म बनने लगे। और दूसरे, आत्मा अपने को देह मानने के साथ साथ अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा जो सुख शक्ति आनंद का दाता है याद भूला बैठे। आप भूल गए हैं परमात्मा, अशुद्ध निश्चय में स्थित स्वरूप विस्मृत आत्मा अकर्तव्य में तत्पर हो गई और कर्तव्यों से विमुख हुई। मित्रों, तीसरी बात, अपने को देह निश्चय करने के साथ साथ मनुष्य आत्मा देह के इस सागर जगत को ही अपना देश मान बैठी और निज अविनाशी सत्ता के अविनाशी धाम को भुला बैठी। भूल गए हो, इसीलिए आप दुखी हो गए हो, जिस कारण ही पांच तत्वों की माया में आसक्त अथवा कामना युक्त होने से वो विकारी पुजारी और दुखी हुई। मित्रों, दुखी हो गए आप क्योंकि संसार को आप अपना ही मान बैठे हो। इन तीनों कारणों के आधार पर आत्मा अपने को साक्षी दृष्टा अभिनेता और अविनाशी सत्ता निश्चय न करने से आत्मा ने जो भी कर्म किए वे उसके स्वधर्म के विपरीत अर्थात विकर्म बन गए और विकर्मों के परिणाम में मनुष्य को दुख तथा अशांति भी हुई और उसके संकल्प संस्कार यानी चेतन आत्मा स्वयं भी अशुद्ध हो गई। मित्रों, और ये सब आप ही की गलत विचार से अशुद्ध संस्कार होने से मनुष्य का जन्म भी विकारी और दुखदायी हुआ और इस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन में फंसकर दुख के चक्कर में जकड़ गया। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि शरीर से न्यारी मैं आत्मा कौन हूं और दूसरे बात कहां से आई हूं, तीसरे बात मेरे अविनाशी पिता परमात्मा के अविनाशी नाम रूप परम धाम और दिव्य कर्म इत्यादि का वास्तविक परिचय क्या है। इस ज्ञान को धारण कर परमात्मा के गुणों का मनन करने से मनुष्य दिव्य गुण संपन्न और विकारी कर्मों से अतीत हो यानी बुरे कर्मों से छुटकारा पाकर सदगति को अथवा सुख शांति को प्राप्त कर सकेगा। मगर आपको तो ये ज्ञान को धारण करना ही चाहिए। तो दुख का कारण यही है कि हम विनाशी चीज को अविनाशी मान बैठे हैं और अविनाशी को भूल गए हैं। परमपिता परमात्मा अविनाशी है। ये दुनिया का जितने ही वस्तु आपके पास है, ये सब खिलौने हैं, खेलने के लिए, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब विनाशी है, क्षण भंगुर है। मित्रों, और इसी को हम अपना मान बैठे हैं। तो यही है भूल आपकी और यही है कारण दुख की। जानते हुए भी आप इसमें फंसे हुए हो क्योंकि सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

मित्रों, मनुष्य का स्वभाव ये है कि उसे याद उसकी आती है जो उसके मन का मीत हो, जिससे उसकी घनिष्ठ मित्रता हो, अथवा जो उसे प्रियतम और हितैषी महसूस हो। इसके अतिरिक्त उसे याद उसकी भी आती है जिससे उसकी शत्रुता हो, दुश्मनी हो, जिसके प्रति उसके मन में वैर भाव भरा हुआ हो और जिसके प्रति उसके मन में घृणा की अग्नि धधक रही हो, अथवा जिससे उसे खतरा हो या जिससे उसे चिंता हो। मित्रों, इस प्रकार प्रीत और विपरीत ये दोनों भाव किसी व्यक्ति की स्वतः याद दिलाती है, याद दिलाते रहेंगे आपको बिना आह्वान किए। प्रीति और वैर वाले व्यक्ति मन के चक्षु के सामने आ खड़े होती हैं। ये दोनों किस्म के व्यक्ति बार बार आपके सामने आ जाते हैं। मित्रों, बुद्धि उनका स्वतः ही चिंतन करती है, चिंतन में रहेंगे आप। सज्जनों, मित्रता और शत्रुता से भरे भावों में अंतर केवल इतना ही होता है कि मित्रता की अनुभूति में खुशी भरी होती है, आनंद का अनुभव होता है, और जीवन की वो घड़ियां जो मित्रता के हिलोड़ों में बीती, जबकि दुश्मनी के भाव में डूबे होने पर मन में एक जलन सी, एक तपसी सी या बेचैनी सी अनुभव होती है, और अभद्रता तथा अहित जैसी अग्नि महसूस होती है। मित्रों, इसीलिए ही मानव को ये परामर्श दिया जाता है कि वो प्रियतम ही की याद में रहें, भगवान की याद में ही रहे और शत्रु के भाव को छोड़े। इसी को ही दूसरे शब्दों में योग अभ्यास कहा गया है, योग अभ्यास। तो योग अभ्यास आप भी कीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपको उल्टा खड़ा होना पड़ेगा, बगली लेटना पड़ेगा, पानी के अंदर जाके सोना पड़ेगा, जमीन के अंदर खोद कर जाके नहीं। योग अभ्यास यही है कि अपने परमात्मा को हमेशा याद रखो, याद करते रहो। मित्रों, जिसमें कि परम हितकारी एवं सच्चे मीत परमात्मा ही की याद समाई हुई होती है, यही है योग अभ्यास। मित्रों, परमात्मा के साथ प्रीति बुद्धि की स्थिति में स्थित होना ही योग है, योग इसी को कहते हैं। तो भक्तों, मनुष्य का एक बड़ा दोष ये है कि उसके जीवन में किसी ना किसी के प्रति किसी ना किसी कारण से वैर विरोध, मन मुटाव और ईर्ष्या तथा शत्रुता का भाव तो बना ही रहता है। तो उसके जीवन में थोड़े ही दिन ऐसे होते होंगे जब उसका मन ईर्ष्या, द्वेष, वैर, मन मुटाव के मैल से रहित धुला हुआ, स्वच्छ एवं निर्मल हो। वो उजले कपड़े पहन लेता है, ठंडे गरम पानी को मिलाकर साबुन लगाकर धो लेता है, शरीर को इतर से सुगंधित से खुशबूदार बना लेता है, पाउडर क्रीम लगाकर मुखमंडल को गोरा, चिट्टा, चमकीला, लजकीला भी बना लेता है, एकदम बना लेता है, प्लामूर कर देता है। परंतु
उसके मन में तो ईर्ष्या की अग्नि होती है, द्वेष की दुर्गंध होती है और नाराजगी का रूखापन होता है। मित्रों, तो बाहर से साफ, अंदर से गंदगी, इसके भीतर का मुख तो काले लंगूर या रिच जैसा होता है। उसके हाथ कमल हस्त न होकर शेर या चीटे के पंजे के जैसे होते हैं। मित्रों, ऐसे लोग है ये, इनसे दूर रहो। वे बाहर से मीठा तथा भीतर से जहर का कलश, हला हल का लोटा या काल कूट का प्याला होता है। ये सब स्वयं को समझता बड़ा बुद्धिवान है, परंतु होता पक्का बेईमान, पक्का बेईमान है, क्योंकि इसमें कुटिलता और शत्रुता ही भरी होती है। बंदर की तरह एक हाथ से चने खाता है और दूसरे हाथ से बाकी के चने काबू करके रखता है ये, और मुख से गुड़ गुड़ करके दूसरों को चने को निकट आने से रोकता है। इसलिए वे नर नहीं, वानर हैं, वानर हैं, देवता नहीं दानव हैं। मुंह में राम, बगल में छुड़ी, ऐसे लोग हैं। बहुत आपको मिलेंगे, शायद आप भी इस तरह का हो तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये सब बुरे आदत को छोड़ो, बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। तो मित्रों, मनुष्य की समझ में ये बात आती ही नहीं कि हर कोई मनुष्य अपने अपने भाग्य को प्राप्त कर रहा है और किसी का भाग्य कोई भी छीन नहीं सकता। तब ईर्ष्या करने का क्या प्रयोजन, क्या मतलब है? तो जनो, द्वेष करने का क्या अर्थ? मन को आनंद से भरने की बजाय गंद से लाद कर स्वयं दुखी होने का उपाय करने की ये कैसी आदत है? मित्रों, कैसी आदत बना रखे हैं आपने? मरेगा तू एक दिन, मैं भी, तो बुरे काम क्यों कर रहे हो? दूसरों को पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हो? दूसरों को ठग क्यों रहे, लूट क्यों रहे हो? अरे तू मरेगा एक दिन, सब छोड़ कर जाएगा। आसपास में नहीं देखा मित्रों, इति प्रेमी में नहीं देखे जो धनवान थे मर गए, काले गए, तू भी जई हो तो मिलकर रहो ना।

इस सृष्टि नाटक में हर एक का अपना अपना रोल है मित्रों, अपना अपना कर्म खाता और संस्कारों का अपना अपना मतलब है मित्रों, संस्कारों का अपना अपना ही लक्ष्य है, अपने अपने गुण दोष है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अन्य आत्माओं के साथ अपना अपना तालमेल है। तब ईर्ष्या करना जैसे अज्ञानी जन शिरोमणि बनना ही तो हुआ है, अज्ञानी जन शिरोमणि बना हुआ है। अगर ईर्ष्या करके कोई दूसरे को हानि पहुंचने का यत्न करता है, कोशिश करता है, उसकी निंदा करता है या उससे भड़क कर बोलता है, तो जैसे अपनी निकृष्टता से अपना भविष्य और भी अधिक निकृष्ट बनाता है, खराब बनाता है। और मित्रों, कोयलों की दलाली में मुफ्त में मुंह काला करता है। ये लोग को पता ही नहीं कि दूसरों को हानि पहुंचाने में कितना खराबी है, ये अपने भविष्य को समाप्त कर रहे हैं। ईर्ष्या करने वाला अपने ही रक्त को ईंधन की तरह जलाता है मित्रों, वो स्वयं को ही सुखाता है, स्वयं को ही वो मारता है, पता ही नहीं ससुरा को है, अपना ही दम खुश करता है, अपना ही रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, अपने ही जीवन को बोझिल करता है। ईर्ष्यालु अपनी ही खुशी को भूसे की भाव सुलगाता है। मित्रों, ईर्ष्या तो टीबी बीमारी की तरह है, तपेदिक है, जिससे मनुष्य की हरारत यानी टेम्परेचर सदा ही बनी रहती है और व्यक्ति खाएं खाएं खाएं खाएं करता रहता है, खांसता रहता है। द्वेष तो दावानल यानी जंगल की आग की तरह है, जो झाड़ी झांकर के साथ अच्छे अच्छे पेड़ों को भी नष्ट कर देता है। ओंकारित साथ ही द्वेष भूकंप का रूप लेता है। मित्रों, मैं आस्था से बोल रहा हूं ताकि आप समझे, जीवन में उतारे, मस्तिष्क में पकड़ो इसो। तो ये द्वेष भूकंप का रूप लेता है। और कभी बॉयलर जो पानी गर्म करता है ना, जानते हैं ना, बाहर देश ठंडे देश में पानी गर्म करने वाला मशीन जिसे हम बॉयलर कहते हैं, तो कभी बॉयलर के फटने का, कभी राइफल की गोली का और कभी हाथ गोली यानी फरनात का, इस तरह ये काम करता है ये द्वेष ईर्ष्या। ईर्ष्या और द्वेष से भरे व्यक्ति की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी, क्योंकि वो तो कभी भी फट सकता है। मित्रों, ईर्ष्या भरे द्वेष भरे वाले इंसान से आप बहुत बच के रहें, ये लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इसको ना दुश्मन है, इसको ना मित्र है, ये सिर्फ अपने आप ही की सोचते रहते हैं और दूसरों को कैसे हम पांव के नीचे जमीन खींच ले। ये लोग इंसान में गिनती नहीं है, इंसान की रूप में है मगर ये सब कुछ और है। दो है ना, एक भगवान होता है, एक शैतान। भगवान का पहचान तो आप जानते हो, शैतान का पहचान अभी बतला रहा था मैं आपको। ये ईर्ष्या द्वेष वाले हैं, आप तो ऐसे नहीं हो ना, ऐसे हो, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, सुधरो, सुधार लाओ जीवन में। हैं, क्यों शैतान बने हुए हो, क्यों राक्षस बने हुए हो, फायदा क्या है, दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो। तुम्हें कोई हानि पहुंचाएगा अच्छा लगेगा, परिवार को हानि पहुंचाएगा अच्छा रहेगा, तो बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह दूसरों के बारे में भी विचार करो मित्रों, जरा बुद्धि को इस्तेमाल करो, खोपड़िया में जो है ना घास भूसा उसे इस्तेमाल करो मित्रों। शुद्ध संकल्प आपके जीवन का अमूल्य खजाना है, इसे सदा
साथ रखो, भेजा मिला है यही खजाना है आपके। सज्जनों, बाहर का प्रकाश तो सूर्य करता है और भीतर का प्रकाश संत महात्मा करते हैं। संत महात्मा से मिला करो, अच्छे अच्छे संत महात्मा से, ढोंग से नहीं जो आपको लूट ले। कह गए हैं ना कि राम जन्म में दूध मिली, कृष्ण जन्म में घी। राम जन्म में दूध मिली, कृष्ण जन्म में घी। कलयुग में दारू मिली, सोच समझकर पी। मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

0: said to me,
1: साथियों, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना है कौन ये वक्त ही बताता है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। और मित्रों, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आप जैसी दोस्त की याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती।

मित्रों, इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी कम हो गई। मित्रों, दुनिया की रैन बसेरा में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस ये ही जीवन का गहना है।

साथियों, मदद करना सीखिए फायदा के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। और मित्रों, शंकर का अर्थ है शं यानि मैंने, कल्याण, कर यानि मैंने करने वाला, मतलब शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला।

साथियों, मदद करना सीखिए फायदा के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। और मित्रों, शंकर का अर्थ है शं यानि मैंने कल्याण, कर यानि मैंने करने वाला, मतलब शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया। पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़कर जाना है, इज्जत, इज्जत और ये गमाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं तिक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सुनने वालों के सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है, लाचार है, भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि स्वस्थ में परिवर्तन आवे। जिनके घर से नया शिशु ने जन्म लिया है परिवार में, तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनके जन्म घाट आज जन्मदिन है, उन्हें बहुत सा बधाई भी दिया जाता है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी की ओर बढ़ने के लिए, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और हर बार की तरह इसको भाई दोहरा देता हूं, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहे थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो मां सरस्वती को भूलना नहीं। बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं, मैं फकांसी। तो मैं आपको हार्दिक से स्वागत करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि ये देशों में एक देश है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने परिवार के साथ, पर यहां जितने भी लोग रहते हैं हॉलैंड, अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक देश जहां कितने सारे मंदिरों है, और सबसे ज्यादा वही जहां जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते कहां हैं? कहा जाता है कि तनहाक शहर, और वहां आपको मिलेंगे मंदिरों जैसे देव मंदिर खासलान में, जो हर रविवार को और होते दाखों पे लगते रहते हैं। जरूर ये कहना चाहूंगा कि दर्शन करके जाना, जो हर रविवार 2 बजे से 5 बजे तक रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा जाता है। कृष्ण मंदिर यनफांखो इस रात तनहाक शहर से, और यहां भी कार्यक्रम हर मंगलवार को 5 बजे से 8 बजे तक रहता है। इसी प्रकार से मंदिर सेवा धाम तनहाक शहर, राम मंदिर दनहाख, और शायद आप रोटरडम शहर में रहते हैं तो वहां भी शिव मंदिर नौसमानसरात, हर रविवार को सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, इसी प्रकार से राम मंदिर रोटरडम, नंदा देवी मंदिर, अगर आप सुतमेर के निवासी हो तो सुतमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो प्रिस्मालान में है, सुतमेर में हर मंगलवार को, और आप जा सकते हैं वहां का कार्यक्रम जो 6 बजे से 9 बजे तक होते हैं।

कहा जाता है कि अगर आप दूर शहर का निवासी हो, जैसे कि आलमीर, तो श्री विष्णु मंदिर जो यूरोपा का और सबसे सुंदर मंदिर कहलाते हैं, लोग दुनिया के अन्य देशों में से आकर के वहां दर्शन करते हैं। आलमीर का श्री विष्णु मंदिर जो कि हर रविवार को 2 से 6 बजे तक

इसी प्रकार से हम लोग का देश में धार्मिक स्थानों भी एक दो है, कुछ ऐसा संस्थाओं भी है कि हमारे पुरखों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि एकता, एक संस्था जो 50 साल से भी ज्यादा

JC Hindu Parishad Nederland. Sanstha JC Hindi Parishad Nederland. Jo kuch 40 saal se bhi zyada संस्था जहां पर हिंदी का आपको सिखाया गया, लिखाया गया, पढ़ने पढ़ाने एक संस्था जो गौर के साथ कह सकते हैं कि मेयर दान 12,000 सर्टिफिकेट uitgeschreven. सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं. एक देश जहां पर पार्थिव लिंगम पूजन भी किया जाता है हर गर्मी महीना में. और उसी में ये मैं जोड़ देता हूं, गर्मी में जब श्रावण मास आता है तो कितने मंदिरों में श्रावण मास पूजा खूब विधि विधान से किया जाता है, जरूर उसमें भाग लेना. सुन वालो, मैं आपके साथ जुड़ा हूं. सुबह का ओख्तंत भजन प्रोग्राम जहां से दनहाग मैके स्ट्रात सेस हिंदू बासस स्कूल फाउन फरेनिंग अलगमेने हिंदू अंडरवाइज की ओर से सभी बच्चों, सभी सदस्यों, सभी अंडरवाइजर्स और सभी दिरक्सी लेदके ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर हम बढ़ते हैं.

इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। ये सुंदर सा भजन जो हम सब चलाए गए हैं, फाहुन सोल जो तनहाख मैकेन्सरात निम्रोसेस हिंदू बासस सोल फाहुन फरीनखिंग अलखमीन हिंदू अंदरवाइस की ओर से।

कहते हैं कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज अपना समय पे भी ध्यान देना। क्योंकि समय जिसे हम जानते हैं काल से, बहुत बलहारी कहलाते हैं। रुकने वाले नहीं हैं। उसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। जिसे हम कहते कि हम उसे पिछाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। हमारा अगला भजन को स्पॉन्सर करने वाले हैं लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर, जिनके अगर आपको वहां मालूमात करना है तो भाई सुहास महावीर से जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका तार का नंबर 00590 5 6 5 8 7 7। सुंदर सा भजन उनके ओर से।

दोस्तों कहते हैं कि ये रिश्ते भी अजीब होते हैं। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बिना धोखा से खत्म नहीं होते हैं। विश्वास है

जरूर ध्यान देना, अगर कोई विश्वास आप पे रखते हैं में ये कहा जाता है कि फर्तौलरा के मार एन किरक्वेट आप खुद समझदार है और समझ गए होंगे

ये सुंदर सा भजन का स्पॉन्सर करने वाले रोटरडम होफ्लीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकर स्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से ये सुंदर सा भजन को हम सब सुनें।

जिनके नाम से रातों में भी उजाला हो जाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको सपनों में भी आए और कृपा बरसाए। प्रभु श्री राम, जय श्री राम।

दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, वे अपने भीतर की दीपक को प्रज्वलित करता रहते हैं।

सफलता समीप्त नहीं होती। सफलता समीप्त नहीं होती, वे एक दीप से दूसरे दीप तक जलती ऊर्जा है। हमारे अगला भजन जो कि फावन के डायरेक्शन और क्रू के ओर से चलाया जाता है, हमारे डायरेक्टर कुमार घेराव जी, जॉनी सुरुजबाली जी, शांता खेमाई जी, राजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराई जी, विजंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, श्रीमान सुरेन जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस्ट, संजय, करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरो रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी और राजेंद्र सिंह जी की ओर से एक सुंदर सा भजन।

हे रब, मेरे दुआओं में असर इतना रहे, मेरे चाहने वालों का दामन हमेशा खुशियाँ से भरा रहे। ये सुंदर भजन जो चलाया गया फाहोन के दिरक्सी और क्रू के ओर से, श्रीमान कुमार घेराव जी, जॉनी सुरजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराय जी, विजंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, सुरेन भगवान जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस जी और संजय करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरू रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी, राजेंद्र सिंह जी और हैन के ओर से ये सुंदर सा भजन जो चलाया गया। आशा ये रखता हूँ कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए यहाँ से कार्यक्रम जो दूसरा मोड़ दिया जाता है। सभी को एक शुभ दिवस।

चली मैं चली, रफी जी और लता जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने सुनवा लो। दोस्तों, एक अच्छे और एक बुरे दिन, एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वे है कि आपके नजरिया, आपके नजरिया, बस यही अंतर है। और उस पे हो सके तो जरूर काम करना, क्योंकि बुरे दिन बताकर नहीं गाते हैं।

तो कहा जाता है कि भरी बरसात में तो पी लेने दो और हमें जीने दो, पर ये बात में मत रहना, क्योंकि कहा गया है कि आज तक किसी जो पीने में दिल रखे है क्या कभी छोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने और देखा जाए कि आज एक शुभ दिवस आपके प्रस्तुत हुए। और ये मत भूलना कि अगर आप जो फिल्म शोले भी देखे होंगे तो उसमें जब अमिताभ बच्चन अपना दोस्त धर्मेंद्र जी के लिए उनके हाथ मांगने के लिए मौसी के पास पहुंचे तो मौसी से सब अच्छे अच्छे बातें और कर रहे थे अपने मित्र के लिए, पर उसमें एक संदेश जो जावद अफ्तर का और सलीम जी का लिखा हुआ डायलॉग्स में से मौसी जी के आवाज़ में हम सब सुने कि आज तक किसी का जुआ और ना किसी का दारू छूटा है। तो इस पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दारू पीने वाले भी हर बार अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ने की भी कोशिश में रहते हैं तो औरों को बार बार सुनाते रहते हैं कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, और चाहे आप उस पे ध्यान ना दो फिर भी वो आपसे इसी इशारा करते रहते कि मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, एक अगला सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आर रहमान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, मसाह कली, जो फिल्म में काम किए हैं अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर। फिल्म दिल्ली 6 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और ये कहना चाहूंगा कि क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। क्योंकि सलाह देने के लिए तो बहुत होते हैं, पर खुश रहने की वजह बहुत कम है।

की हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कि अभी आपने सुने कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।

पा लेने के बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का सफर है दोस्तों। और जो कभी कुछ आप पा गए,

तो खोने का डर, क्योंकि कहा गया है पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर। हम इसी में लगे रहते हैं, बस इतना ही जिंदगी का सफर कहलाते हैं।

नुसरत और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी।

सिंह चड्डास फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस अपना आवाज दिए, फिल्म में काम किए हैं आमिर खान और करीना कपूर।

दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए अनेकों तरीका क्यों ना हो, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, और क्यों ना अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, तबलाइस्त्रन फिया इंटरनेट। दुनिया के हर एक देश में इसे सुना जा सकता है।

कहते हैं कि जीवन में एक बात तो तय है, जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है।

की कसम खाई है और जो कसम खाया जाता है तो वो ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसे शायद आप सोचे कि कसम खा लिए है और चलो उसे भूल जाना, क्योंकि ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। एक चीज तो जरूर है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारे उम्र। धीरे धीरे जो खत्म हो रहे हैं वो हमारे उम्र है। आज कुछ पुराने गीत और कुछ 90s के रोमांटिक सॉन्ग के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहे। यही आशा लेकर कि जरूर कुछ न कुछ इसमें से आपको अच्छा लगे होंगे।

मनुष्य जो भी सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, उन सभी भक्तों में सदैव वास करता हूं मैं, और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता हूं।

अंधेरा हुआ दूर रात के साथ, अंधेरा हुआ दूर रात के साथ, नई सुबह आई, नई सुबह आई बधाई के साथ। आंखें खोल देखो, आंखें खोलो देखो, गणेश की शुभकामनाएं साथ।

परिस्थिति जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, बस चलते ही रहना। सुना दे हमको महेंद्र कपूर जी और मना दे और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में सुने कि जीवन चलने का नाम, चलते ही रहना, चलना ही जिंदगी है, रुकना के नाम, रुकने का नाम मौत। फिल्म शोर नेखन तीन सेफन तक के ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया, चला दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों।

मन्ना देवी जी की आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण की है कि ओ नदिया चले चले रे धारा, फिल्म का नाम हम देखे तो फिल्म का नाम सफ़र है, सफ़र है फिल्म का नाम। बचपन का यार बुढ़ापा का बुखार हमेशा दिल में रहता है। बचपन का यार बुढ़ापे का बुखार हमेशा दिल में रहते हैं। दुश्मन का चांटा सीधे दिल में चुभता है। नोटों के पेटी घर में बेटी किस्मत से मिलती है। नोटों के पेटी घर में बेटी किस्मत से मिलती है। माँ की डांट झापड़ बाप के थप्पड़ जीवन की राह सिखाते हैं। नाना नानी का दुलार दादा दादी का प्यार हमेशा हमेशा याद आएंगे। उम्मीद उम्मीद जब जंग लगी नाकामी संग लगी बर्बाद कर देते हैं। और जुए की आदत शराब की लत कहीं का नहीं छोड़ते। इसी के साथ हम आपसे कहते कि खुश रहो सलामत रहो जी भर मुस्कुराओ। खुश रहो सलामत रहो जी भर मुस्कुराओ। पत्थरों का नहीं बल्कि फूलों का घर बनाओ। प्रेम से सजाओ प्यार से पेश आओ।

इतने सुंदर से फरमा दी है। महेंद्र कपूर जी ने कहती है कि ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। एक बुजुर्ग ने सच कहा है, अब वो बुजुर्ग ने क्या कहा है और क्या ऐसी सच्चाई है, तो यहाँ से हम मिलकर सुनते हैं आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। एक बुजुर्ग ने सच कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो फिर सास में बुराई कैसे, और अगर बेटी के दुख से दिल तहलता है, तो फिर बहू के दुख में सुकून कैसा। अगर ननद का घर में आना भाभी को चुभता है। ये बुजुर्ग ने कहा है, एक बुजुर्ग ने कहा है कि अगर ननद का घर में आना भाभी को, भाभी यानी कि भौजाई को चुभता है, तो भाभी का मायके जाना सही कैसे, हमारी माँ बहनों को थोड़ा सा सोचना होगा। ज़रूर से सोचो, ये मैं भी कहती हूँ।

ये सुंदर सा गीत कि संसार है एक नदिया फिल्म रफ्तार से निकाला गया है और ये पिक्चराइज किया गया है 1955 में 1955 में। और इस वक्त में हमने सुने अनुराधा पौडवाल और बबला मेहता जी की आवाज़ में। एक जोक आपसे बताना चाहती हूँ कि एक दोस्त ने पूछा अपना एक दूसरा दोस्त से, दोस्त ने पूछा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। एक दोस्त ने दूसरा दोस्त से पूछा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तो वो दोस्त ने कहा बस कुछ खास नहीं, बस कुछ खास नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, पटनी की ताने, दर्द भरी गाने, बाकी भगवान जाने। यहाँ पे एक और सा एक छोटा सा जोक आपके लिए कि सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, जो अकेले रहते हैं वो दुखी, जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, फिर ज़िंदगी में मज़ा आखिर ले कौन रहा है। ज़िंदगी का मज़ा आखिर कौन ले रहा है, जब सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाला दुखी, शादीशुदा वाला दुखी, तो सवाल उठता है कि आखिर में इस ज़िंदगी का मज़ा कौन ले रहा है।

बेशक बीते हुए लम्हों की कसक हमेशा साथ रहेगी। सुना दी हमको महेंद्र कपूर जी, महेंद्र कपूर जी फिल्म जो गीत ने सुनाई और फिल्म का नाम है, हाँ आप तो जानते ही होंगे, आप तो जान ही गए होंगे फिल्म का नाम। अगर नहीं जाने हो तो बता देते, फिल्म का नाम निकाह। निकाह ने कंतीन तुन तख तक में ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। दोस्ती होती है वन टाइम, एक ही बार दोस्ती होते हैं वन टाइम, हमें निभाने पड़ते हैं उसे फुल टाइम। याद किया करो एनी टाइम, याद किया करो एनी टाइम, तुम खुश रहो ऑल ऑल ऑल टाइम। यही दुआ प्रार्थना है, यही दुआ प्रार्थना है लाइफ टाइम। यहां से आपके लिए एक छोटा मोटा वाला जोक बता देते हैं। आप मेरे साथ जरूर से कल्पना करें कि एक व्यक्ति खड़े खड़े सब्जी वाले यानी जो खुरंत बेचते हैं, सब्जी वाले की काफी देर से सब्जी वाला काफी देर से सब्जियां पर पानी छिड़क रहा था। सब्जी वाला एक व्यक्ति जो भाजी बेचते हैं, सब्जी वाला यानी उसे सब्जी कहते हैं, भाजी को सब्जी भी कहते हैं, कि सब्जी वाला काफी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। अब पानी कब छिड़कता है, जब सब्जी जो ने पत्ता जो है वो भाजी जो है वो पत्ते जो कुमलाने लगते हैं तो उस पर पानी छिड़कते हैं ताकि वो थोड़ा सा हरा भरा दिखाए। तो एक सब्जी वाला काफ़ी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था और एक ग्राहक बोला, कस्टमर वो बोला, भैया भिंडी को जब होश आएगा तो 1 किलो दे दो।

यहाँ से हम एक बार फिर सुनेंगे फिल्म निकाह से। इस बार है महेंद्र कपूर जी, सलमा आगा, किशोर कुमार और आशा भोसले जी।

0: मम्मी ना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों बैठे खाएंगे। हाँ
1: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है।
2: हाँ ले जाओ, ले जाओ।
1: थैंक यू सर।

आगे भी जाने न तू और पीछे भी जाने न तू, हम एक पल की कुछ नहीं जानते। आशा भोसले जी की आवाज़ में फिल्म का नाम वक्त, जो निकटतम फैफस दस्तक में पिक्चराइज किया गया है। आपसे एक गहरी बात यहाँ से करनी चाहती हूँ और वो ये है कि किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लिया, किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लीजिएगा। बात ना भी हो तो एक मैसेज ज़रूर से कीजिएगा। अगर गुस्सा आए तो चार बातें कहकर और उतार दीजिए। गुस्सा आए तो चार बातें कहकर और उतार दीजिए। प्यार आए तो उसे गले लगा लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ज़िंदगी कभी कभी दूसरा मौका

के लिए ये सुंदर सुंदर गीत भी चलाया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, गंगा में डुबकी लगाकर, गंगा में डुबकी लगाकर तीरथ किए हजार, इससे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। रोज जाकर डुबकी लगाना गंगा में और विचार ना बदले तो। आप तो समझदार है, आप तो समझ गए होगे। कहते हैं कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। एक बार फिर कहते हैं कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे।

alle gevallen jouw geweten laat jou wel weten. Heb dan een schone geweten. Onze geweten zijn onze grote, grote, grote rechter. Adalat wahihe. अदालत से हम जाकर झूठ बोल सकते हैं पर अपने आप से नहीं वो पीछा करते हैं आखिरी सांस तक आया सावन झूम के मोहम्मद रफी जी और लता जी की आवाज में टाइटल सॉन्ग यहां से आपके लिए पेश

आया सावन झूम के। ये सुंदर सा गीत रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ में यहाँ से मिलकर और श्रवण की है ताइतो सोम, जिसे हमने बताया है यहाँ से चला दिया गया है। बेईमान से कमाए हुए पैसा, बेईमानी से कमाए हुए पैसा आखिर में बीमारी में लग जाता है। हाँ, कम कमाओ मेरे प्यारे सुनने वालों, कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। ये गीत से पहले आपने सुने यहाँ से मिलकर हम सुने कि मेघा रे मेघा यो गीत में आए थे ये शब्द। तो मेघा तो हम जानते हैं सुरनाम से, मेघा को कहते हैं केकर मेघा, बल्कि असलित में हिंदी शब्द होता है मेघा यानी कि बारिश, रेखन, रेखन को कहता है मेघा। ये बात मेरे को पहले भी नहीं पता था, पर सोचते विचारते और पूछते तो आगे बढ़ चले हैं कि मेघा कहते हैं बारिश को। तो जिस जिस बात को मेरी को ज्ञान है तो यहाँ से मैं आप सब से वो शेयर करती हूँ, बांटती हूँ। एक गीत भी है बैठक गाना में जिसमें कहते हैं कि अटरिया पे लागल चोर, अटरिया पे लागल चोर। तो ये शब्द भी अटरिया, तो हम सोचते हैं कि हमारे इन खवांद हैं, पर इन खवांद नहीं है। शब्द ऐसा कहते हैं कि अटरिया, बल्कि अटरिया को कहते हैं बालकोन को, जिसे हम सुरीनाम में गदरी कहते हैं। बालकोन गदरी इसको कहते हैं अटड़िया, कि अटड़िया पे लागल चोर बला मजारा जाग जाना। ऐसे कई ऐसे अन्य शब्द है, अगर हम इस पे गौर करें तो इसका असली मतलब, इसका अब असली जो बात है उसको हम पता कर लेते हैं।

सब खेल है, कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा, ये लौट कर आएगा। मेरे सुनने वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, कि कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा। कर्म का सब खेल है, कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा, ये अवश्य ही लौट कर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है ना, जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। ये कर्म का सब खेल है, ये लौट कर आएगा।

दिन की है जिंदगानी। स्वामी शंकरानंद जी कहते हैं कि किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखो। पाने के लालसा ना रखे, पाने की लालसा ना रखे। जलन की भावना से बचे, जलन की भावना से बचे। रोजाना रोजाना ध्यान करे, मेडिटेशन है सैफर यूएनएल का। जो कभी बदल नहीं सकता, जो कभी बदल नहीं सकता, उसे सहना सीखो। और कहता है कि किसी भी काम को टालो नहीं, किसी भी काम को टालो नहीं, और ऐसा कोई काम ना करे जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमें आगे में पछताना पड़े, और जो अच्छा कर्म है, जो अच्छा कार्य है, उसको टालो नहीं। इसको भी एक बड़ा शब्द में कहा गया है, अक्सर हम सुनते हैं कि जो कल करना है सो आज करो, और जो आज करना है सो अभी कल धारो। क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। और जो बुरा विचार आए तो उसको जरूर से टाल देना। हाँ हाँ, उसे जरूर से टाल देना, क्योंकि उससे आपका भविष्य खराब होता है। बुरा विचार आए तो उसे टाल देना, हाँ सालों तक उसे टाल देना। अगर अच्छा विचार आए तो झट कर देना, झटपट कर देना, उसमें वक्त नहीं लगाना।

0: यमराज जी, ये मूर्ति किसकी है?
1: हाँ, ये मूर्ति किसकी है फिल्म क्रांति से निकाला जाता है ये सुंदर गीत आपके लिए।
0: ये मूर्ति देवी की नहीं,

अब के बरस तुझे धरती की रानी, तुझे धरती की रानी जरूर से कर देंगे। मनोज कुमार और महेंद्र कपूर जी सुना दी है देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम क्रांति, जो नेहा कक्कड़।

0: प्यार।
1: जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, अभी आप सुन रहे थे रमायती मुकेश जी की आवाज में। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला।

हरियाली और रास्ता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुन रहे थे लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी की आवाज में लाख उतारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते ऊपर वाला उनके साथ कभी बुरा भी नहीं होने देते। किशोरा आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं ये दर्द भरा अफसाना।

किशोर डा की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये दर्द भरा अफसाना, सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द न कोई जाना। छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो, गम में क्या रखा है मजे से सर उठा के जियो, उदासी क्या चीज़ है बस मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।

सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनाड़ी से हमने पेश किए हैं अशर जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे।

ये आप सुन रहे थे इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत ही दवा देते हैं। सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, एक फूल दुमाली है फिल्म का नाम।

सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र। फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली से हमने पेश किए है सुनने वालों। मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है, मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है, तुझे सुबह का सलाम भेजा है। तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन।

कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आन मिलो सजना से हमने पेश किए हैं। आए मिलन की बेला है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से द टाइटल आप सुनेंगे। आशा जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी आई मिलन की बेला से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन गीत चलाने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद दोबारा सवेरा होता है। हमारे गांव कोई आएगा

सुन रहे थे हमारे गांव कोई आएगा, और मैं ये आप सभी के वास्ते कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे दूर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो जाने दीजिए, पेट्रोल बहुत महंगा है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा।

मैंने प्यार किया तुम्हें रीजन से अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी सावन। प्यार में कभी कभी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुसु मुसु हासी।

0: रोजा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। एक बहुत सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। सोनू निगम जी की आवाज में आप सुनेंगे।
1: You and Robbie, huh? What's up?
2: Whatever.
3: Hey, but where's Rohan?
2: I don't know, and I don't care. I hate him.
4: But I love you.

देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, अवका यज्ञ के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले थे। दीवाना है देखो बेकरार।

0: are you?
1: दीवाना है देखो बेकरार भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम जी की आवाज़ में। कल हो ना हो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं प्रिटी वुमन।

प्रिटी वुमन भी आप सुन रहे थे, और प्रिटी वुमन के बाद हम पेश करते हैं ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते।

जग घूमिया थाड़े जैसा न कोई, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सुल्तान से हमने पेश किए हैं अक्रोच है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप ये सॉन्ग सुनेंगे।

0: हमारे गांव शबरामपुर।
1: आक्रोश से अभी आप सुन रहे थे सौरेबाजी, ब्लैकमेल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तूने दी बेकरारी।

From the movie Blackmail से हमने पेश किए हैं तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। From the movie फटा पोस्टर निकला हीरो।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। आई फिल्म ललकार नई खंडिंग ट्वेन सही मत कॉम्पोज बाय द ब्रॉडर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी। क्या जगालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो करी बड़ी कमजोर है यार, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा। ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैव टू नाश्ता ऑल तकलीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे सरनामी संगीत, खास करके हमारे फाहुन हिंदुस्तानी के माध्यम से, और उसके बाद कुछ नए नए आवाज़ें हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी भी है। तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना, जहाँ पर भी हो जिस साल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो, मैथिल फील लयस्तर प्लेजीर के साथ। मैं तो यही आप सभी से हमेशा कहता रहूँगा कि हंसते रहो, हंसाते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, और साथ ही साथ जियो और जीने दो। रफ़ी साहब

चलो महफिली सजा लो हमेशा का तरह प्रोग्राम और कार्यक्रम का शुरुआत। हमारे भी प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सरनाम देश का एक महान गायक, बैठक गाना का गुरु, उस्तादों का उस्ताद श्री राम प्रसाद राम खिलावन जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे बड़े बड़े राजा।

पास सुरिनाम देश का महान गायक उस्तादों का उस्ताद और बैठन गाना का महान गुरु श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी। अगला बयान सुनने को जा रही है आप सभी को एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरिनाम देश के मेयर बकंत अल्स द फ्रोइटी फ्रॉ फॉन द यार 1960-70, ook in Holland jarenlang gewoond en heel veel gezongen. Bohoti Mashur Ganewali, Amare Suriname, des West-Indisch, Trinidad, Tobago, Jamaica, Ustadin, Srimati, Manraji, Lechmanjike, Beautiful Awaz, Mee, Ati Sundar Bayan, Aisa Mausam, Ke Mausam To, Bohoti Gambhir Hai Yaro, Enjoy the Music, Sarnami Sangeet.

शाबाश शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाले सूरीनाम देश का बैठक गाने का उस्तादी श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी। अगला बयान एक और अति सुंदर बयान है हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना, वो भी त्रांगा बैठक गाना फ्रॉम सूरीनाम। ना टूटा दूध का दांत, क्या बात।

Shavaishya Trangabaita Gana from Suriname na Tuta Dut Kedant. अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को और एक शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को मैस्त्रो रामानंद राम गुण गाय के।

0: Şabaş şabaş, meşhur gayek hemare Surinamdis ka ramanın tıcı ke madurawaz mi ye ati sundar sikcha aur sabak se bhara hua bayan ab shrotaon ke seva mein pesh kiya gaya. Agla bayan ek jabardast chutney song hai aur gaane wala hai hamare Holland desh ka naujawan kalakar जो काफी नाम कमा चुका है हॉलैंड सुरीनाम देश अमेरिका त्रिनिदाद टोबैगो द वन एंड ओनली प्रिंस चार्मिंग शिवम राजाराम. और वो क्या कहती है कि चलो पीसे मसाला मैशअप.
1: वी ऑल नो दैट मैजिकल पाउडर दैट स्पाइस ऑफ योर फूड एंड

Shava, shava, shava, spise, mashala, meshev by Mishur Gaya Kamare Holandiska, Shivam Rajaram. अगला बयान आप सभी को सुनाने की जा रही है उभरती हुई कलाकारा तिफानी पूरन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान सुरिनम टूर चटनी बैठक द चाय टू मिक्स सॉन्ग.

ब्यूटिफुल सॉन्ग पंडटवा बाय इरफान फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे है। अगला बयान दोनों नैना ब्यूटिफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे है आप सभी को स्टीफन रघुनाथ।

शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद रूबेन पंचम जी के मधुर आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी प्रेम संगीत आप सुनेंगे चल बंबई रानी।

चल बम्बई रानी प्रेम संगीत के मधुर साज और संगीत पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं और ये भी आज का ये जो सरनामी संगीत पहला अध्याय बैठक गाना का आखिरी सॉन्ग होगा और वो सुनने को जा रहे हैं आप सभी को पंडित रायन कल्पू जी के मधुर आवाज में। ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि प्यार किया तो डरना क्या, सही बात है ना।

शाबाश शाबाश, महान गायक हमारे सूरीनाम देश का पंडित रायन कल्पू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कि प्यार किया तो डरना क्या। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं, नहीं अभी आप तो कुछ और सुनेंगे। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जन्मत।

आजा पिया अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और राजेश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख और राजेश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कति पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

1969 के बाद आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बड़ा सानी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्रा और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शास्त्र के बात है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका जो मैंने चॉइस करके रखा उस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

आया सावन झूम के बाद दोस्तों, अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नैन मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्म बनाया, बड़े बड़े फिल्म जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनहारी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

या आपको भी पता है उस आलिम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों, मस्त बहारों का मैं आशिक फिल्म फर्स, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया और जितेंद्रा फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों, बीते हुए दिनों में एक बात थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जब शुरुआत करते थे तब तो फिल्म फ्लॉप हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्रा है या था, जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्रा एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

या फिर कह पी सी शिल्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। बहारों ने किए सजदे, बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया है। माइट मुकेश के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, बॉम्बे बाय नाइट फिल्म का नाम है।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गाइड, इस फिल्म में देवानंद एक गायक था, हिट्स था, रेस हिट्स, और एक सॉन्ग है जिसने शैलेंद्रा ने लिखा है। शैलेंद्रा का असली नाम है शंकर दास केसरी लाल होना चाहिए, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्रा का असली नाम है। आप जानते हैं दोस्तों, एक गाना जब एक गीत जब बनता है तो लोग गाते हैं, हम हमेशा कहते हैं राफी ने अच्छा से गाया, मुकेश अच्छा से गाया, लता ने अच्छा से गाया, किशोर कुमार ने गीत अच्छा से गाया, लिखी वो शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ। तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया। उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता, अच्छा नहीं लगता है। तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों। तो सलमान खान आज इतना बड़ा एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनान सानी, दोनों की आवाज़ में सुन जरा।

सुन जरा सुनिए सुन जरा, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव फिल्म का नाम, अनुराधा एंड उदित नारायण।

होगा क्या लव सॉन्ग जा मेरी जा रही है सनम। एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस, 90s रोमांटिक सॉन्ग है और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

हर एक काम जो रेडियो के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से। न्यू सी फन तक 3 से 5 2 2 फी सी पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

Nieuw song met Piskarung Adosto, 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे.

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप

प्यार है नया एहसास है। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाजों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

हिंदी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में आपकी बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा की यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

हम यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहरी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खुदे दाख दोस्तों ये है फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो और प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन और मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त पवन।

दोस्तों, आज के अपने इस प्रोग्राम में भी मैं हर बार की तरह आपके लिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेके आया हूँ। हम सुनेंगे ढेर सारे सुपर हिट सॉन्ग्स और करेंगे ढेर सारी बातें। तो बस मेरे साथ बने रहिए, ओनली ऑन फाहून FM हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों, प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। आप हैं अपने होस्ट, अपने दोस्त पवन शर्मा के साथ ओनली ऑन फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो, और यहां पर हम सुन रहे हैं कुछ मस्ती भरे सॉन्ग्स। तो बने रहिए मेरे साथ।

0: दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको पूरी तरह से एंटरटेन करूं। अगर आप मुझ तक अपनी फरमाइश पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फेसबुक खोलिए, वहां पर सर्च कीजिए आरजे पवन ऑफिशियल, जो कि मेरा फेसबुक एड्रेस है, और मुझे फटाफट से मैसेज भेज दीजिए। आप ऐसा ही कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं आरजे पवन ऑफिशियल और मुझे अपनी फरमाइशें बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, कुछ अगर आपके सुझाव हैं किस तरह से हम इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी कि आप मुझे वो सुझाव भेजें। चलिए, जब तक आप ये मैसेजेस भेजते हैं तब तक हम सुनते हैं ये बड़ा प्यारा सा सॉन्ग।
1: वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खुयदाग, दिस इज आरजे पवन, आपका होस्ट, आपका दोस्त ऑन फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो। और आज मेरे प्रोग्राम दिल कनेक्शन में मेरे साथ हैं भारतीय मूल की डच सिटीजन जो यहीं पे रहती हैं, यहीं पे पली बड़ी हैं आप सभी के बीच, और आज आप सभी के लिए कुछ करना चाहती हैं, बिकमिंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। That's our aspirations, that's our hopes, and that's our best wishes for her, and that's the reason कि वो आज हमें join की हैं। I would like to welcome Ms. Nupur Kohli. Nupur, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे program दिल कनेक्शन में।
1: धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हाँ आज यहाँ पर होके, और सारे listeners के लिए भी नमस्ते, खुददा, good afternoon. I'm so happy to be here.
0: So, Nupur, आप चर्चा में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शंस आने वाले हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब अपने डायस्पोरा से कोई निकल कर आता है, हमें बहुत सारी उम्मीदें जगती हैं कि आगे चल के इंडिया, क्योंकि ओरिजिनली हमारे जो ओरिजिन्स हैं, हमारे जो रूट्स हैं वो इंडियंस हैं, और जो भी इस रेडियो से कनेक्टेड हैं यहाँ पर वो सारे भी इंडियन ओरिजिन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक रखते हैं। तो हमें बड़ी प्राउड फीलिंग होती है जब हम देखते हैं कि आप जैसे लोग इंडियन डायस्पोरा से निकलकर आगे चल के सिर्फ हमें ही नहीं लेकिन तमाम जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग होंगे सबको रिप्रेजेंट करने वाले हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। तो नूपुर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमें, हमारे तमाम सुनने वालों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सके और अपनी अभी तक की जर्नी के बारे में बता सके।
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर नेदरलैंड्स में, जैसे आपने बताए हो, पैदा हुई हूँ। मेरे माता पिता भारत से हैं और यहाँ पर पली बड़ी हुई हूँ, और घर पे तो हम दो भाषा बोलते थे, एक्चुअली तीन भाषा बोलते थे, हिंदी, डच और इंग्लिश। तो फिर मुझ में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के तो सारे साथ मिलकर एक बहुत अच्छी मिक्स है, सारे कल्चर्स मुझ में एक हो रहे हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बड़ी होके मैंने डच स्कूलिंग करी। मैं एक्चुअली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो फिर मैंने मेडिकल डॉक्टर का काम किया है, और मैं ये पॉलिटिक्स की जर्नी मैंने 10 साल पहले ही शुरू करी थी। तो फिर 10 साल से मैं VVD पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि VVD पार्टी फ्रीडम को बहुत अटेंशन देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अटेंशन देते हैं, और वो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को भी काफ़ी अटेंशन देते हैं, और सारे लोगों के लिए जो नेदरलैंड्स में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ 10 साल से, और उसके वगैरह मैंने यहाँ पर नेदरलैंड्स में भी काफ़ी बोर्ड मेंबरशिप कर चुकी हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे घर में इंडियन वैल्यूज की बहुत माना जाता था, हमारी परंपरा, हमारे धर्म भी, और सबको रेस्पेक्ट करने का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और वो साथ लेकर भी कि कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए जिंदगी में, इसलिए भी मैंने पॉलिटिक्स में एंटर करी हुई हूँ। और मुझे लगता है हम उसके बारे में भी आगे और ज़्यादा भी बात भी कर सकते हैं कि मैंने क्यों एंटर करी, और मुझे अब क्यों लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना इतना वैल्यूएबल क्यों है।
0: डेफिनेटली, एंड आई थिंक दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क, एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल आल्सो बी इंटरेस्टेड टू नो दैट, कि आप कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज योर थीम, व्हाट प्रिंसिपल्स यू आर फॉलोइंग, एंड किस तरह से आप देखती हैं आगे कि आप पूरे डायस्पोरा की हेल्प कर सकते हैं, कम्युनिटी के लिए हेल्प कर सकते हैं, और ओवरऑल बीइंग ए डच सिटीजन दैट्स आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम किस तरह से एक आम लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लेके आ सकते हैं।
1: हाँ, तो फिर थीम्स के बात करने से पहले इम्पॉर्टेंट है बताना कि आजकल जब हम डच पार्लियामेंट में ट्वेदे कैमर के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो फिर वहां पर एक डायरेक्ट इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इंडियन डायस्पोरा से तो 90s में भी एक थी, और बाद में भी एक आई थी, लेकिन काफी कुछ सालों से डायरेक्ट इंडियन रिप्रेजेंटेशन तो कभी था ही नहीं। तो फिर जब हम मेनलैंड यूरोप को भी देखते हैं कि हमारी इंडियन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं है, तो फिर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक कोई चाहिए जो हमारे इंडियन डायस्पोरा की बातें सुने, समझे भी, क्योंकि हम उनको अच्छी तरह जानते हैं और सुनकर भी एक्शन ले सकते हैं। और जब एक हमारी एक रिप्रेजेंटेशन आएगी ऐसे भी होगा कि हमारे रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में बढ़ेगी और विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो फिर ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें भी देखना चाहिए थीम से हम पहले बताने की कि रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ी बात है।
0: Absolutely.
1: और होपफुली इसके बाद भी काफ़ी लोग सोचेंगे कि हमारे लिए भी पॉलिटिक्स भी एक ऑप्शन है कि कम्युनिटी को कुछ वापस देने का। तो फिर आपका सवाल था कि ये मेरे थीम्स क्या है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ तो फिर पहले हेल्थ केयर के बारे में मेरी काफ़ी नॉलेज है और पॉलिटिकल लेवल पे भी कि हेल्थ केयर सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है, अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है। ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और कि यहाँ पर के हेल्थ केयर सिस्टम समझे भी कि हमारे हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स क्या है और उनको ट्रीट भी कैसे करना है, वो एक बात है। सेकंड है कि एजुकेशन सिस्टम का और हमारे बच्चे को क्या दे सकते हैं यहाँ पर नेदरलैंड्स में, क्वालिटी एजुकेशन हो या फिर हम डे केयर के बारे में बात करते हैं तो फिर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे हमारे फाउंडेशन है तो फिर यहाँ पर कैसे बड़े होंगे, उनके फ्यूचर क्या होगी, वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी दो तीन टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। हाउसिंग, सब लोगों के पास एक घर हो वो अफोर्डेबल भी हो और जो लोगों को जरूरी से जरूरी चाहिए भी है एक घर वो उनको मिले।
0: Absolutely.
1: और मैंने सेफ्टी के बारे में मैंने अभी बात ही भी नहीं करी। जब हम सड़क पे चलते हैं शाम को भी रात को भी कि हमें एक सेफ फीलिंग हो, जब कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज हो भी कि उसको एक सही पनिशमेंट मिले, वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी नेदरलैंड्स इंडिया कनेक्शन को मैं और मजबूत बनाना चाहती हूँ, ट्रेड के कनेक्शन के लिए भी लेकिन वैसे कल्चरल कनेक्शन के लिए भी। और यहाँ पर उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैं हमारी इंडियन कम्युनिटी के बातें सुनूँ, उनको देखूँ भी कि क्या हो रहा है और वैल्यू भी करूँ, फिर सब लोगों को लगे कि वो इस कंट्री में रेस्पेक्टेड है। यही मेरे टॉकिंग पॉइंट्स है और मेन थीम्स है। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, हमारी इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी नेदरलैंड्स में पिछले सालों से काफी बढ़ गई है। आने वाले सालों को देख के वो लोग भी और भी बढ़ेंगे। हमारी इंडियन कम्युनिटी काफी वाइब्रेंट है, बहुत डाइवर्स है और उसको देखकर भी मैं देखना चाहती हूँ कि हम और भी हमारी लाइट और सब जगह पे जाए और सब लोगों को पता भी लगेगा कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको वोट कैसे, आप वोट कैसे कर सकते हो 22 नवंबर को। 22 नवंबर मैं जैसे मैं बताई थी, मैं एक कैंडिडेट हूँ डच नेशनल पार्लियामेंट के लिए। 22 नवंबर 2023 नेशनल इलेक्शंस है और कृपया आप मुझे आपका वोट दें। तो फिर इसकी प्रोसीजर ऐसे मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और डच में भी बताऊंगी। सो ऑन 22 नवंबर please vote for list 1 VVD number 53 Nupur Kohli. Any Dutch passport holder, no matter where you live in the Netherlands, you can vote from any place in the Netherlands, can go vote. So I hope to see you on 22 November when you vote. All the votes will help a lot. Dan zal ik nu ook met u delen hoe u kunt stemmen op 22 november. Ik sta op lijst 1, VVD, nummer 53. Mijn naam is Nupur Kohli. En als u 22 november stemt op nummer 53, lijst 1, VVD, zal ik daar heel blij mee zijn. Ik kan alle stemmen heel goed gebruiken. Waar u ook bent in Nederland, u kunt voor mij stemmen. Toch weer Endgar Nikhilip. Please, IA, 22 november. Mujhe apna vote dijiye aur hum saath milkar bahut achhi cheeze kar sakte hain Netherlands mein.
0: Thank you so much, Nupur, for your time today. I'm pretty much sure ki hum sab sunne wale yahi koshish, yahi prayer, yahi prarthna, yahi ummeed karenge aur saath hi saath vote bhi karenge taki hamare diaspora ka naam aur bhi zyada uncha ho sake. It can attend more heights in the Netherlands.
1: बिल्कुल और उसके लिए हम पूरे जोश से हम काम करेंगे
0: जी. थैंक यू सो मच नूपुर फॉर योर टाइम टुडे.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू.

दोस्तों, इस खूबसूरत से सॉन्ग के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मैं जल्दी से वापस आता हूँ। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन पाहुन एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर।

दोस्तों, फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं आ गया हूँ आपके पास लेकर एक एंटरटेनमेंट का खजाना।

खाहुन एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आप हैं अपने दोस्त अपने होस्ट पवन के साथ। प्रोग्राम का नाम है दिल कनेक्शन। दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम के लिए आपकी कुछ फरमाइशें हैं, अगर आप कोई स्पेशल सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो मैं आपके नाम से प्ले करूं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है कि आप फेसबुक पे जाइए, लॉग इन कीजिए, वहां पर मुझे सर्च कीजिए आरजे पवन ऑफिशियल के नाम से। मेरे पेज पर जाकर मुझे एक मैसेज कीजिए और बताइए वो कौन सा सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आपका इस प्रोग्राम के लिए कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे इसी फेसबुक पेज पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और वहां पे भी आप आरजे पवन ऑफिशियल को सर्च कीजिए, मेरे पेज पे जाइए और मुझे अपना मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, जब तक मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूं, तब तक सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने हिंदी सिनेमा में अपने सफर की शानदार शुरुआत की 1992 में रिलीज हुई उनकी चार फिल्मों से, और इन फिल्मों के नाम थे दिल आशना है, चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन और 1992 की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवाना। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हैं सुपर डुपर स्टार किंग खान यानी मिस्टर शाहरुख खान। चलिए सुनते हैं।

और दोस्तों इसी ब्यूटीफुल सॉन्ग के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं RJ पवन ऑफिशियल के नाम से। तो दोस्तों मैं आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगा। और बस और दोस्तों चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर आपसे मिलके इस दिल ने महसूस किया है कि मिलते रहे तो ही जिंदा रहेंगे। दोस्तों मैं आपका होस्ट आपका दोस्त पवन अब आपसे विदा चाहता हूं। आप अपना आने वाला पूरा वीक इसी तरह से इसी मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए और हम मिलेंगे अपने अगले आने वाले प्रोग्राम में। तब तक के लिए रखे अपना ख्याल। आपका ये होस्ट आपका ये दोस्त अब आपसे चाहता है विदा।

0: Meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: नाम से और जाकर सुनाम के समाचार आपके लिए और प्रस्तुत करता है हर एक कोई जो अब तक फोन की है, जानते रहना यह है ये सराल। अभी कुछ घड़ी के अंदर में उनकी आवाज़ आप सुनेंगे, श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जी। और जाकर सुनाम के न्यूज़, सुनाम के हालात, राजनीति के क्षेत्र पर हर एक कार्य जो हो रहा है वहाँ पे, और सप्ताहवार वीकली एक दिन जो है शनिवार को एल के साथ रख तो सत्वी और गृह के दरमियान प्रस्तुत करता है। श्रीमान राजकुमार रोली मोहन
2: आज की ताजा खबर, आओ पापा जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।
1: तो हमारे साथियों और यहाँ से श्रीमान रोली मोहन जो आपसे और बताएंगे और जो जाकर लाइव जुड़ चुका है हमारे भैया मोहन, मैंने मोहन वेलकम इन द आउटस्टैंडिंग इवेंट लाइव फ्रॉम द ऑफ द रेडियो। हेलो खुद में
3: राखिए शाम शाम, एक सौ एंड द लुइसरास दा खुद में दा या फंडा एसआर दा। Laten we een beetje babbelen met betrekking tot zaken welke gaande is in Suriname. Ja, het zou goed zijn dat we toch wel, zoals gebruikelijk, de vorige keer had ik KPS gepakt, de problemen, en heb ik uitgedrageld. Vandaag wil ik toch wel bepaalde punten snel waarmee we zitten, wat nu toch wel heet hangijzer is, even bespreken. En daarna zou ik toch wel vandaag het punt van de VHB en de komende verkiezing, bestuursverkiezing van de VHB, daaromtrent zou ik toch wel

0: सबके चाहिँ आत्मा आफत बैठे के बरकात निकट और चाहेगा एक रास्ता चुने के ये फदील हुई है या दैट विल सैक्रिफाइस स्प्लिंटरिंग आएगा भी थ्रू फन स्टेमर्स में या तो पार्टी फिर स्वाक के लिए या वो चीज ना चाहिए हुए के या चाहे यूएस हैव स्टेल करके जहां हम लोग सिलेक्ट कर लिए और जहां हम लोग आफ्टर रह गए पार्टी वो सब चीज चाहिए हुए के मैं सब कोई मांगे फोर्सेटर हुए एक ही जो है को प्रॉब्लम ला कनाई मांगे फोर्सेटर हुए गैदीन मांगे फोर्सेटर हुए योगी मांगे फोर्सेटर हुए मथुरा मांगे फोर्सेटर हुए ये सब डॉइलर पॉलिसी ये सब मांगे फोर्सेटर दिस और ये भी रहा प्रसाद इनके कल्याण तो उबेलक पॉलिसी एक फर्स्ट लैंड एगो कागज बनावल जाए और एगो आंतर क्रिटेरिया बपाल कर जाए ये के माह से पहुंचे करोगे के कौन चीज तो के चाहिए रहे के स्कूलिंग एंटीटे ऑक्सफ्रॉक में आइले फेल्ट कैसे है ये सिस्टम है एक आंतर पॉइंट पे ना कि एक पॉइंट पे नहीं आंतर पॉइंट पे दस साल ये तो वेल दार है मैं सब उन्हें किसा aantal kriteria vaststellen. Heel goed. Wanneer hoor ik je een Italiaan vergadering bij politie? Al Italiaan, meneer, meneer, Jan, dat is duidelijk politie op het plaats vergadering. Die hoe erg vind ik er heel, die hebben nog een eigen partijcentrum in, nog op die 200 meter, die hebben nog een partij dat dat ook mee vergadering krijgen. Of hebben nog een wanneer vergadering krijgen. Oh, Kanhai is de veroorzaker van Lisa Kanhai ke naam. Nou, aap log jaan sake, die oogroep joan bezig, dat ik bezig. Die Londen joan bezig, mange veranderingen lawe, statuten ke, oh de reglement. En maar jaan me, oogroep wa ietsje joan na mange. Want u sab mange jindegi bar, ja sab baitel he, me baitel rahe. Sab na mange ki doorstroming, van jong kader dan boven jij. Kortom, zodra we daar ook mee eens is aan de bedrijven, ja, oude, ik wou af dat je goed rega te pino, Bhagwan ke naam se, pino, je mogelijkheid rega, te dekje koi, ik wou af dat, kaka pijle se naam de pino, president a jij te kabo liga, ka paise, ka na paise, on the wealth of voorwaarden. Dat was het voor vandaag. Samen en de luisteraars, laten we hopen dat we volgende week toch wel met betrekking tot het vertrek van de president, wat hij gedaan heeft en meegehaald heeft, proberen kunnen weten.
1: Meneer Rolly Mohan, आपको हृदय से धन्यवाद हमारे साथियों जो अभी जैसे मैंने बताया राजनीति यानी पॉलिटिक के क्षेत्र पर और पॉलिटिक के सुनाम की जो खास करके हमारी पार्टी जो फेहपे उनके बारे उसके बारे में और जबकि आज संतोखी नहीं रहा तो अब नया फोर्सेटर कौन होगा उसके बारे में आज वो हमारे भैया खास करके श्रीमान राजकुमार रोली मोहन आपको संक्षिप्त रूप में बतलाए और आने वाले भविष्य में क्या होगा वो आप सुनेंगे आने वाले दिनों में। तो आज के दिन जो है अपनी जैसे मैंने अभी कहा अर्थलेख और अपनी मीनिंग और कमेंटार के जरिए से आपको समझाए मैंने रोली मोहन आपको हृदय से धन्यवाद फैन वीकेंड एंड एक मुठी बदान के तौर फॉलो वीक मैंने मोहन
0: Dankjewel, Sam en de luisteraar. Hebben jullie ook een fijne middag?

मत भूलना फाहुन पे चून रहना दोस्तों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो है आप ही की संगीत लिए जो पेश कर रहे हैं, आपके लिए प्रोग्राम करते हैं और हमेशा हर वक्त हर पल जब आप सुनना चाहेंगे तो यूं ही अपना फोन को ऑन कीजिए, यानी कि ही दोस्तों और खास करके फोन को ऑन कीजिए और प्रोग्राम सुनते रहिए इंटरनेट के जरिए से अपने फोन पर, पीसी पर, टैबलेट पर और घर पर जो है दिया भी रेडियो

हमारे प्रिय दोस्तों, यही सोचते हुए हम जो चला रहे हैं हम आपके लिए, सोचते हुए यही बात कि आपको हमारी प्रोग्राम जो है और ख़ास करके आपको पसंद आता हुआ होगा,

0: Vahon Hindustani Radio.
1: हाँ हमारे दोस्तों, कार्यक्रम आप सुन रहे हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की। Wens u een mooie dag, een gezegende dag.

तो रिश्ते के बाद जो हम करते हैं दोस्तों, एक रिश्ता जो कायम रहता है और वो रिश्ता जुड़ा है और वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है। दोनों प्रेमी आपस में प्यार करते हैं और सच्चाई से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा बात यह है कि सच्चाई है, यूँ ही मैं आपसे कहता हूँ कि जब किसी ने आपको छोड़ना चाहता है, जब किसी ने आपको छोड़ना चाहता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेते हैं दोस्तों। आप जानते हो जिसे के ऊपर ये बीता है वही जानता है और वही आपसे बतला सकते हैं।

तो हमारे दोस्तों प्रोग्राम में ये प्यार भरी नगमा आप श्रवण किए और बातें चीत होते चलता है। और एक नगमा यहाँ जो मैंने आपके लिए चुन रखा हूँ और गुजारिश पर आप ही की गुजारिश पर फिर से एक बार ये नगमा हम पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई हकीकत आपसे बतलाता चलूँ कि ये सच्चाई है हकीकत है दोस्तों। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा दोस्तों, और वो वक्त पर समय पर, यही तो समय है, यही वक्त है, इसे वक्त कहते हैं।

नॉनस्टॉप हिट सिलेक्शंस हम आपके लिए जो पेश कर रहे हैं, तो खामोशी के बारे में आपसे कहूं कि इंसान की खामोश से नाराज मत हुआ करो, इंसान की खामोश से यानी कि खामोशी से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि अक्सर टूटे हुए लोग खामोश रहा करते हैं। हमारी प्रिय मित्रों और दोस्तों, प्रोग्राम जो सुन रहे हो, तो इस बार जो नंबर हम आपके लिए आपके चुन रखा हूँ, और चल के सुनते हैं। पुराना नगमे, गोल्डन ओल्डी।

इसीलिए तो मैं कहता हूँ इट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन दोस्तों, और ख़ास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो है हर एक पल आप इसे सुन सकते हो जब आप चाहो और जहाँ भी आप चाहो। हमारी दोस्तों यूँ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेशक एक इंसान जो होते हैं अच्छे अकल से खूबसूरत बनता है दोस्तों, बेशक इंसान जो है अच्छे अकल से खूबसूरत बनता है, अच्छी सूरत से नहीं। इसे आप जो सहमत हो, मैं दिस टेलिंग

0: हमारे दोस्तों प्रोग्राम में ये खास नंबर अभी आप सुने और आप जो साथ दे रहे हो दंक वेल हमारे तार को नंबर दोस्तों और खास करके ये कार्यक्रम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के है 24 घंटे लगातार हर एक पल आप सुन सकते हो। और खुशी की बात ये है कि मैं खुश हूँ कि आप साथ जो दे रहे हो। तो आगे में चल के सगी जो हम आपके लिए पेश करें, ज़रा से ये बात बतलाता चलूँ दोस्तों, और ये बात मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बातें चीत जो होते हैं आपसे, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो अवश्य ये मुमकिन है। और आपके यूं ही तार पकड़ के और तार फ़ोन करना पड़ेगा कि ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं दोस्तों, हमें ये ज़िंदगी औकात के बारे में मैं आपसे कहता हूँ कि किसकी औकात कैसे कहाँ तक है, ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं लेकिन इतना मालूम है। हाँ दोस्तों, ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं लेकिन इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, काम आ जाता है। और बड़ा आदमी जिसे कहते पैसे वाले लोग नो जो दोस्तों और हमारे मित्रों, कि बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा जाता है, ये तजुर्बा आपके है, हुआ है कभी आपके साथ ऐसा कुछ तो यूं ही आप कह सकते हो।
1: अरे एक

आप भी और इसमें गुनगुनाएं दोस्तों, ये नंबर जो हम आपके लिए पेश करते हैं और किए दोस्तों आप ही के लिए, ये किस्मत जो हमारी है, किस्मत ने, हाँ दोस्तों, किस्मत से फैसले नहीं बदलते, किस्मत ये जो हमारी है, फैसले से किस्मत नहीं बदलते, लेकिन फैसलों से किस्मत बदल सकती है दोस्तों, ये कहना है और हमारी प्रोग्राम आगे के बढ़ाते हुए

हमारी प्रिय दोस्तों, प्रोग्राम जो सुन रहे हो आप खुश हो, मैं खुश हूँ और साथ में मिलके कार्यक्रम चलते हैं। फाहून के मत भूलना और सुनते रहना। आपके तार करने के लिए भैया, ख़ास करके जो अभी अभी आपने फ़ोन किए, आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कि यही कह दूँ आपसे कि खुदा अगर मांगे पर बंदा देता है, खुदा अगर मांगे पर बंदा देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। दोस्तों आप सुने ना कि खुदा जो है, खुदा अगर मांगे पर देता है, खुदा अगर मांगे पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। और आपने तार किए डंकवेल, और आप ही के नाम से ये नंबर तो चलाते हम।

प्यार भरी नगमा दोस्तों, और यूं ही बातें चीत होते रहते हैं आपके साथ मिलकर, क्यों यूं ही, और खुदा अल्लाह भगवान सब एक ही है ना, जितने भी है और दुनिया में कितने नाम से उनके पुकारते हैं, फिर भी हर एक के दिल की तसल्ली वो देते ना कि अल्लाह जब भी हालात बिगड़े, अल्लाह खास करके यही बात कहते हैं, और जिस नाम से आप भी पुकारो आपको कल्याण होगा, जब भी हालात बिगड़े मेरे तब दिल को तसल्ली के लिए यही काफ़ी है दोस्तों। जब भी हालात बिगड़े मेरे तब दिल को तसल्ली के लिए यही काफ़ी है, अल्लाह बहुत बड़ा है दोस्तों। यूं ही कहते कहते प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं हम। हम नहीं, हमता में गुरूर है, मैं कहता हूँ

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में हैं, चाहे जोन आई संदेश में हैं, लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो, जा अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा, नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो, तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की, तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च, तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं, तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों। ओन दफ़ा यू खाल सेखे एक बेन खबोर इन नीलांद, यू खाल सेखे या एक बेन फन हीर एक बेन फन दार, मार और स्प्रोंकलक हील फिर मैं सेखे ये बेन फन इंडिया नी या नो मे फोर ओदर्स वेल, एंड दार मग ये सीकर ट्रोस ऑप सैन मैं से सो खाते तोख, यू मग हट सीकर ट्रोस ऑप सैन तो सुरिनामी जो आज हम आप लोग को सुनाएंगे, और इसके बाद हम क्या सुनाएंगे दोस्तों, आओ एक और सुना जाए मैथ याद गार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की, ये जोंग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओंस कलाकार या सुरनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं, और इस गीत ये इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मीन्स, एंड लाते वे इवन गान लुइस्टरन, इट इज हील मूई मेट मेट वॉइस ऑफ एन वीरेस उदित राम निशा मदारन और अहमद अली सुरेंद्र सुताल फरीज बरसाती एंड यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ ये गीत को ये सब गाए थे, मेट ऑल्स ड्रॉप इन द राउंड चटनी मसाला लगा कर राउ सुना जाए।

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिश राम खिलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिश राम खिलावन इस ऑन्स टॉपर एन फॉन द टॉपर्स नेचुरली दी हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन्स सरनामी हैव गेसोन। लाते हुए इफ़ खान लाइस्टर फॉन्स क्रिश राम खिलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein nahi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamara sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

और बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे दरहाख के रवीन बलदेव सिंह हैं। मैं से वहाँ नार ओन से फॉलोसलीत या दतमुत ओक अंकीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान्स, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोसलीत इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोसलीत को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और बेंसे ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, agar je kuch apna khun mein hai, apna shareer mein hai, to ye sab geet jo hai, to aapko jhagjor dete hai ki hamara desh Surinam to apna hai desh hai, jahan pe hamara janam bhoomi hua hai. Lekin sab log ko wo feeling nahi hai, lekin jitni log ke aapko feeling hai, to hum chalte hai एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सूरीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yanniki, Guru Dit Kala Singh Bhi, ek Suriname kan, aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था. तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सरनाम के लड़के.

पुराना कलाकार है गुरु दत्त कल्ला जी का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपन स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से दैट इज निमत अंदस दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सचियानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: और दोस्तों आप लोग को आज हम कुछ गर्मा गर्म हॉट वॉर्म सॉन्ग सुनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहना यूली मुख वेल में जिखान स्विंग और न खाली स्विंग करियो नाच सके झूम सके है और फरखेट इट ओक ऑन स्टेबल वारे नागिन मन डोले मेरा और टंडोले भी है और दोस्तों हम जरूर जलते हैं हम कहां जलते हैं महबूबा की ओर महबूबा क्या करते हैं

ये दोस्तों मोफी के नाम थे शोले शोले एन शोले 1975 का जीपर एन जीपर एन जीपर जीपर हिट फिल्म थे। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी दुख

और क्या क्या क्या क्या खूब लगते हो, और खाली खूब नहीं सुंदर भी लगते हो।

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा, ये पर्दा, और हटाकर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना,
1: पर्दा हटा दो जरा।

Johnny. It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: भी राह रहेरी, उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो फाउंड में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shook care while on the beat.
0: And beat.

रमदा योगी, रमदा योगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टर्क तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना। सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है, जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

और तुम इस तरह से और मेरी जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

0: आए जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बदन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट गया
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिगर नाम है वक्त 1965 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

और हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए परमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है

और हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो। अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि न बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

भी तुझको रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1900 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: नजर बचाकरी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों।
1: आज हम आप लोग को भी कुछ पुराने गीतों से आपके हम सेवा करेंगे, और पहला गीत हम बढ़ते हैं और वो है हाल है। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, किशोर कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, और इस फिल्म में काम किया है जितेंद्र रेखा, विनोद खन्ना ने काम किया है इस फिल्म में, और फिल्म मूवी का नाम है अनोखा अनोखी अदा। अनोखी अदा की ओर हम चलते हैं।
2: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम,

और दोस्तों हाल क्या है, हाल क्या है दिलों का, ना पूछो ना पूछो सनम। आज भी बीच बीच में कुछ शायरी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे। क्या कहते हैं, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, मेरे आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है दोस्तों, तेरे आगे जमाना है। तो कुछ कहते हैं एक और, कि तो हजार बार भी रोती तो मना लूंगा, तू हजार बार भी रोती तो मना लूंगा तुझे, मगर देख जानू मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो, तब तो मनावे, नहीं वैसे लात ना चली। नहीं दोस्तों, प्यार में लात नहीं, प्यार चलते हैं। किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है, फिर क्यों बेवफाई के वो इल्ज़ाम दे रही है। तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है तेरी जाना दिल के, लेकिन चांदनी के पास हम जाते हैं। चांदनी क्या कहते हैं,

और मेरी चांदनी, अगर आप ऊपर देखोगे तो तुम्हारी चांदनी ऊपर आकाश में है या तुम्हारे बगल में है, ये तो आपके लिए हम छोड़ दे कि वो कहाँ है। तो दोस्तों कहते हैं पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, कि कहते हैं अपनों के बीच बेगानी हो गए हैं। अपनों के बीच कभी कभी होता है दोस्तों कि जो सोचते हैं कि हमारा है उसके बीच में तुम बेगानी हो गए हैं, अपनों के बीच में बेगानी हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं। जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वही वीराने, आज वही पर वीरान हो गए हैं। तो हम चलते हैं अपनी महबूबा के ओर, और आपके महबूबा कौन है वो तो आपके बगल में होगा, लेकिन यहाँ हम फिल्म धर्मवीर के बातचीत करते हैं, और धर्मवीर में ये माँ धर्मिंद्रा, धर्मिंदर सिनत अमन और जोर तोर से इसमें काम किया है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

और ओ मेरी महबूबा, ओ महबूबा महबूबा में क्या क्या होता है, और गुस्सा होता है और प्यार भी उसी से ज़्यादा होता है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर दोस्तों, की जाती है इस झील की गहराई, जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, यानी कि दीपता कहाँ तक जाते हैं, कि जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, आँखों में तेरी धूप के, आँखों में तेरी धूप के देखेंगे किसी रोज, आँखों में तेरी धूप देखेंगे हम और किसी रोज देखेंगे, और जो देखेंगे तो प्यार तो जरूर होता होगा, कि जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारी दीदार में उसको क्या होगा। तो हम चलते हैं नाइटिंगेल लता जी के ओर, और इस फिल्म में राजकुमार नीतू ने काम किया है, फिल्म के नाम है अनारी।

और तेरा जाना और नैतिकी लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं और एक गीत को ओ लक्ष्मी के प्यारे लाल का गाया यानी बजाया हुआ सजाया हुआ ये गीत है मुकेश माइती मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग। फिल्म के नाम है जोंग मी तो दीवाना दीवाना और दीवाना। फिल्म मिलन की ओर हम लेकर चलते हैं हमारे दोस्तों।

और मैं तो भी दीवाना दीवाना और दीवाना हो चुका है। और हम चलते हैं कि कहते हैं महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, नींद इसके नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पिला देना गो, दो घूंट पी लेना दे आंखों से पहले से, नशा तेरी आंखों में शराब जैसा। तो दोस्तों तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर, और एक सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग है जो एक इसको पहला पहला प्यार भी कहते हैं दोस्तों।

0: और पहला पहला प्यार तो सभी को होता है, और जिसे पहला प्यार होता है उसके तो मालूम है कि प्यार क्या बातचीत है, प्यार क्या होता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत का एहसास, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों एक गीत की ओर हम जाते हैं। एक कोई ज़माना में ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जया प्रधा ने काम किया है, और ये फिल्म का नाम है शराबी। शराबी फिल्म के नाम है दोस्तों, लेकिन हम शराबी नहीं हैं, फिल्म का नाम है शराबी। तो आओ मिलकर सुना जाए किशोर जी और आशा भोसला का गाया हुआ, आशा भोसले को गाया हुआ ये गीत है।
1: ये क्या मजाक है विकी साहब?
2: मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे?
1: वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है, ये हॉल खाली क्यों है?
2: हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है, तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए।
1: बड़ी मेहरबानी की आपने, शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह उसके दिल के आह के निशान मिटा देती है।
2: वाह, तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने, इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैर के निकलते रहे।
1: जो बात की गहराई को नहीं समझता वो किसी कलाकार की कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो किसी तवायफ के कोठे पर चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
2: तवायफ? कोठा मतलब हवा, आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं। मीना जी, हम तो यहाँ आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया।
0: कभी जिंदगी में किसी को जलील मत करना दोस्तों, जलील जब किसी को किया तो वो अच्छा बात नहीं होता है, किसी को जलील मत करना।

और मुझे 9 लाख मंगा दे रे। और वो कौन है, किसको कहते हैं? सजना दीवानी के बात होते हैं। और आज आप लोग को हम क्या क्या सुनाएंगे दोस्तों, और हम चलते हैं एक गीत की ओर, जिसका कहते हैं दीवांगनी के ओर हम जाते हैं।

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते ही, क्या आपको मालूम है, आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारो, तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इसमें सोन ओ फिल्म मार अति से ही लमो यूनिवर लात वे वीडियो खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

की में होके सवार चली रे। फिल्म का नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

और 100 साल पहले तो मुझे प्यार था, मालूम नहीं है कि 100 साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निकटी हॉन्टेड एंड फिनेस अस्तका। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

लग जाना, लग जा गले तो फिर ये मुलाकात हो न हो। नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम, वो कौन थी और ये गीत जो है। दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं है, किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमात श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। निखत इन होंदत एन फीन से अस्तक मेंजे, मैं निगाहें तेरी चेहरे से। परमाश्री मोहम्मद रफी एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एगो सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

को करीब एक घंटा कुछ हिट सॉन्ग सुनाएगी और वो कौन सा सॉन्ग होगा? कुछ मोहम्मद रफी का परमा श्री मोहम्मद रफी का हॉट सॉन्ग और कुछ माइती मुकेश का सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे। आओ बढ़ा जाए सबसे पहला सॉन्ग की ओर हम चलते हैं और वो है माइती मुकेश का, ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है पूरब और पश्चिम।

कोई जब हमारा कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। और ये फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम, जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है। कितने लोग इस फिल्म को देखकर बहुत प्रसन्न किया है। और फिल्म पूरब और पश्चिम में जिसने माइती मुकेश ने काम किया है दोस्तों। और अगला गीत की ओर हम जाते हैं, वो है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है प्यार का सागर, जिसमें मीना कुमारी राजेंद्र कुमार ने काम किया है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली कौन है, आओ सुना जाए।

और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कौन हैं आपको तो पता है। आज कुछ पद्मश्री मोहम्मद रफी का गाना और नैति मुकेश के गीत से आपको हम सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपको पता है हम चलते हैं फिर से एक फिल्म के नाम है मिलन, जिसमें नैति मुकेश ने इस सॉन्ग को गाया है। नीति जीवन शस्त्र का ये गीत है, मैं तो दीवाना दीवाना और दीवाना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और ये सॉन्ग है

और आपको आज हम दोस्तों पद्मश्री मोहम्मद रफी का गीत और यानी कि माइती मुकेश का गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे। तो एक माइती मुकेश का, तो अब हम जाते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी का और मूवी का नाम है घराना निहत हो का गीत है, जिसमें पद्मश्री मोहम्मद रफी आशा जी ने और इस गीत को बहुत खूबी से गाया है। इस एन हिट सॉन्ग जिसमें राजेंद्र कुमार आशा परीख ने काम किया है, आओ सुना जाए।

और जब से तुम्हें हमने देखा है, अगर ये आपको हमने जब से देखा है तो सिर्फ आंखों में कौन है, तुम ही तुम हो। तो दोस्तों आगे तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम तरुण जाते हैं ओल्ड इन गोल्ड जोंग, और है मैथ मुकेश ए नाइटिगेल लता मंगेशकर का ये जोंग है, फिल्म के नाम है हम तो तेरे आशिक है, हम तो तेरे आशिक है। और देखो क्या गाया है।

een movieke naam, he, dosto. Vers 967 agit. Ban ma janiki, mainti mukis, au naiti gil, lataji ka song, he. Ham to tiri, aanshik he, song ka naam, he, dosto. Aur aap jante he, aanch hum aapko kushi karenge. Aur wo he, dal mensidi, fan, liter van mainti mukis, en Mohammed Rafi. Parmaat Shri Mohammed Rafi ko geet ko pasand karte. Aap sab ke liye, aanch aapko hum moka deti he, ki ye dono ko geet aap suniye. To hum chalte he, ab बारी है, अब की बारी है परमा श्री मोहम्मद रफी और आशा जी भी साथ में हैं। मूवी का नाम है

तुझे देख के और दीवाना हुआ बादल। श्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का ये गीत है, मूवी के नाम है कश्मीरी, कश्मीर की कली दोस्तों, जिसमें शमी कपूर और शर्मिला टैगोर ने काम किया है हमारे दोस्तों। उसके बाद तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो भी है, वो है मधु मुकेश का, ये सॉन्ग है और इस फिल्म में मनोज कुमार ने काम किया है। फिल्म के नाम है हिमालय की गोद में, माला सिन्हा और मनोज कुमार ने काम किया है। मैकी मुकेश का एक टॉप सॉन्ग यहां से हम चलाते हैं।

और मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। ख्वाब से कहाँ प्यार करते हैं लोग, ख्वाब में रोक सिर्फ ख्वाबों में गुम रहते हैं। तो मुकेश की बात में और हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी की और हम जाते हैं दोस्तों। और आशा जी इस गीत में काम किया, ओल्ड इज गोल्ड क्लासिक सॉन्ग। और ये मेरे हाथ में तेरे हाथ, जिस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने काम किया है दोस्तों, मूवी के नाम है कश्मीर की कली।

मोहम्मद रफी जी, परमा श्री मोहम्मद रफी जी और आशा जी क्या करते हैं। वाह वाह वाह, तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं और वो गीत तो होगा मैथिली मुकेश का, ये सॉन्ग है हमारे यारो, और ये गीत जो है ये फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता निकट ट्वीन शस्त्र का। ये सॉन्ग जो है एक सुपर हिट सॉन्ग है मुकेश का, मैथिली मुकेश और नाइटिंगेल लता का ये

एक नहीं ढूंढे ना मिला, तारो गिनिया एक नहीं मिला। और क्या क्या क्या माइती मुकेश और यानी कि लता जी, नैतिक लता जी आपकी सुनाई हैं हमारे दोस्तों। तो हम आपको सुनाते हैं, फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता, निक रोंड त्वीन सस्ता का फिल्म है जिसमें मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। और यहाँ पे बताए गए हैं मैथी मुकेश एंड नैतिक लता मंगेशकर का सॉन्ग है।